0: ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਵੜੈਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ 5871208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस।
1: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए
2: ओ सारे डरदे नहीं चकदे ओना नु लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे सामान नु हाथ पावे
1: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालेयां नु एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा सामान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ
3: अपने घर जां ऑफिस दा सामान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी
1: एक बार फिर स्वागत है जी रेडियो सरसंग 94.7 एफएम ते 5 बजे तक आ साथ है आप जी नाल ओंटेरियो दे एक एयर एम्बुलेंस कंपनी दा कहना है कि एक एयर एम्बुलेंस क्रैश दे विच 6 व्यक्तियां दे मारे जान दा खदशा है ते सारे क्रू मेंबर सी एक मेडिकल एवैकुएशन फ्लाइट सी जो के यूएस दे ईस्ट कोस्ट ते गवाच गई सी ते बरमूडा तो बोस्टन नू जा रहे सी ते इस विच 6 व्यक्तियां दे मारे जान दा खदशा है ते सर्च एंड रेस्क्यू जड़ा है इस नू हुण रोक दिता गया ओंटेरियो बेस्ड कंपनी ने जानकारी दिती है लैटीट्यूड एयर एम्बुलेंस ने स्टेटमेंट जारी कीती कि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने एक्टिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जिहड़े कीते ते फिर इस नू रिकवरी एफर्ट दे विच बदलिया गया ते हार्टबीट 104 मेड इवैक जिहड़ा एक प्लेन सी उसकी जिहड़ी भाल है हुण रोक दिती गई है अथॉरिटीज काफ़ी देर तो लभ रहे सी ते इस विच 4 लैटीट्यूड क्रू मैंबर सीगे एक पेशेंट से जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा सी बरमूडा तो बोस्टन ते एक फैमिली स्कॉट जिहड़ा सी ओ पेशेंट दे नाल फैमिली मैंबर सी सो पेशेंट भी मारिया गया ते उस दे नाल जो फैमिली मैंबर नूं बिठाया होया सी ओ भी जिहड़ा उसकी भी मौत हो गई ते 4 क्रू मैंबर सो सैटरडे नूं ये जहाज़ गुम होया सी ते मंदभागी खबर जो कि अक्सर इहो जिहे केसां दे विच आउंदी है वह आ गई है कंपनी का यह कहना है कि असी यूएस नैशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के नाल कोऑपरेट कर रहे हैं ते नाल ही ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कैनेडा दे नाल भी कोऑपरेट कर रहे हैं ते रिकवरी एफर्ट ते इन्वेस्टिगेशन दे विच असी बिल्कुल जिहड़ा अपना हिस्सा पा रहे हैं कॉज अजे तक कोई नहीं दस्या गया पर जांच तो बाद ही रिपोर्ट आवेगी फिर ही पता लगेगा इधर कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस दे दो फौजां दे जिहड़े व्यक्ति ने जी दो उन्हां नूं टोरंटो दे विच कई सारे दोषां दा सामना करना पै रहा जिस विच किडनैपिंग ते थैफ्ट अगवा ते चोरी दे केस भी हैगे ने डिपार्टमेंट ऑफ नैशनल डिफेंस दा कहना कि बंबार्डियर्स दोने हैगे ने हो संचिता फर्नैंडो ते जेम्स मोरियो इन्हां नूं टोरंटो पुलिस ने अगस्त महीने दे विच फड़ लिया सी रिपोर्ट हुण बाहर कढ़ी गई है फर्नैंडो ते मोरियो जो कि 7th टोरंटो रेजिमेंट दे दोवें मैंबर हैगे ने उह उन्हां दे संबंध जिहड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दे नाल जुर्म दे नाल दुनिया दे नाल जुड़े हुए ने ते थैफ्ट ऑफ फायर आर्म्स ते वैपन्स ते हथियारां दी चोरी नाल भी उन्हां दा उन्हां ते दोष है मोरनियो जो कि कनेडियन आर्मी के 2018 में भर्ती हुए थे फर्नैंडो जोड़े से कनेडियन आर्मी 2020 हुए सी ते इन्हों जड़ा बड़े माणयोग मैंबर वजों जो जाने जाता इस वेले चोरी ते अगवा दे दोषां दा सामना कर रहे ने जी उधर टोरंटो दी पियरसन एयरपोर्ट तो आप जी नूं पता है कि 22 मिलियन की कीमत का सोना करंसी खिसका लिया गया सी

0: ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 4039036757 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ
1: ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 5876174696 587-617-4696 ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 5876174696
2: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
3: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बर
4: इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी सेहत है वो ठीक रहे और प्लस मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको ध्यान से रखें बिकॉज सर्दी आने वाली है और इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो ठीक हैं। कैलगरी के अंदर अगेन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं इस समय भी जहाँ पे आप जा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। हर एक हमारी कंट्री इंडिया इतनी वाइब्रेंट है और इतनी मल्टी ये कह सकते हैं सोसाइटी को बिलोंग उसको करती है कि हर एक प्रांत में हर एक सिटी में हर एक स्टेट में अपने डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं और वी आर सो लकी कि हर कल्चर के लोग जो हैं हमारे इंडिया से कैलगरी के अंदर हैं और अपने जो कल्चरल फेस्टिवल हैं वो धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही एक हमारी एसोसिएशन है कैलगरी तेलंगाना एसोसिएशन जो कि हर साल एक बहुत ही अमेजिंग कल्चरल फेस्टिवल लेके आती है रिलीजियस फेस्टिवल लेके आती है जिसका नाम है बटुकम्मा और ये जो फेस्टिवल है वो हर साल बनाया जाता है। बटुकम्मा जो है वो 9 दिन का ट्रेडिशनल फ्लोरल फेस्टिवल है जो स्पेशली जो लेडीज हैं वो मनाती हैं और कहते हैं कि ऑनरिंग द गॉडेस गौरी एंड सिग्निफाइंग लाइफ नेचर एंड वाटर अर्थ का जो बॉन्ड है इसको इस फेस्टिवल में मनाया जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो फेस्टिवल है वो कैलगरी में भी मनाया जा रहा है। यूजली ये जो टाइमिंग है एनुअली है 9 दिन का ये जो रहता है प्रोग्राम जो फेस्टिवल है वो रहता है और अगेन स्टार्टिंग ऑन महालया अमावस्या एंडिंग ऑन सदुला बतुकम्मा अहेड ऑफ दशहरा।
3: तो ये और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में अपन जानते हैं। आज हमारे साथ टीम जुड़ी है कैलगरी तेलंगाना एसोसिएशन की, आइए उनका स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी नम्रता जी का और वेदा जी का। क्या बात है, इट्स एन अमेजिंग नेम वेदा। तो वेदा जी का स्वागत करना चाहूंगा और वील फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। तो स्टार्ट विद नम्रता जी, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नम्रता जी
5: नमस्ते। अमृत जी एंड एज ऑलवेज आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो आपसे बात करने के लिए एंड टू शेयर मोर एक्साइटमेंट विद यू एवरीबॉडी।
3: दैट्स ऑफ कोर्स एंड सो आई थिंक थिंग्स

0: been very busy for you. I see you a lot on Facebook and you've been everywhere.
1: Yes, and thanks to every organization that is actually invited. So, at least I have an excuse to enjoy every function.
0: Absolutely. And Vedaji, that's again a very beautiful name. And congratulations to, or I can say kudos to your parents to give you such a name. So, Vedaji, you are here for the first time. So, what do you do for the association?
2: So, here I'm the cultural secretary for this event.
0: Right.
2: And I'm just going to take care of the cultural activities and everything like regarding programs like dance, singing, music, and various kind of activities.
0: क्या बात है. सो नम्रता जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बटुकम्मा मैंने अभी थोड़ा सा संक्षेप में बताया, ये जो फेस्टिवल है ये एक्चुअली क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा अगर आप इसका सिग्निफिकेंस दें.
1: जी, बिल्कुल. हर साल आपने जो संक्षिप्त में बोला, इट इज अ वेरी एप्ट. तो ये हर साल हम मनाते हैं. ये नवरात्रि के टाइम पे आता है
0: जी.
1: और इसको यू कैन से दैट टू बी रिलेटेबल टू एवरीबॉडी, ये गरबा की तरह है.
0: अच्छा.
1: तो ये तेलंगाना गरबा है. दिस इज सेलिब्रेटेड.
0: अरे वाह, क्या बात, क्या बात.
1: तो 9 दिन मनाया जाता है एंड एवरी डे हैज अ सिग्निफिकेंस. तो आपने जैसे कहा है कि इट इज इन ऑनर ऑफ गॉडेस गौरी, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ पार्वती देवी. वी सेलिब्रेट, तो ऑल प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश स्टेट, ऑल द वुमेन इन दैट इन दोज स्टेट्स. सो इसमें वी आर ऑनरिंग गॉडेस गौरी एंड यहाँ पे ऑल द वुमेन व्हाट दे डू इज दे मेक फ्लोरल स्टैक्स, मतलब एक टेम्पल के जैसा पूरा फ्लावर्स, उसका एक सिग्निफिकेंस है. तो द मेन थिंग स्टैंड आउट लाइक तंगेड़ू, गुनकू पुलू, ये जो फ्लावर्स है दे हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दे हैव अ सिग्निफिकेंस एंड विद दोज फ्लावर्स इज व्हाट वी मेक अ टेम्पल शेप्ड फ्लोरल स्टैक. और सब बनाते हैं, लाते हैं एंड देन वी डांस अराउंड देम और गौरी माँ को बिठा के इन बिटवीन दैट फ्लोरल स्टैक एंड वी ऑल ब्रिंग एंड पुट इट टुगेदर एंड देन वी डांस अराउंड इट. तो वो 9 दिन चलता है.
0: क्या बात है. और अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं भी थोड़ा सा सीख रहा हूँ इसके बारे में. द वर्ड बटुकम्मा कम्बाइन्स बटुकु दैट इज लाइफ एंड अम्मा मीन्स मदर.
1: करेक्ट.
0: सो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं.
1: सो हम गॉडेस को बुला रहे हैं लाइक अम्मा, माँ आप आ जाओ,
0: आप आ जाओ,
1: आप आ जाओ,
0: जैसे पापा को बुलाते हैं. राइट.
1: अरे आप आ जाओ और प्रोटेक्ट करो.
0: क्या बात है, क्या बात है. नम्रता जी, इट्स वी आर सो लकी कि हमारे को जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे जो क्या कह सकते कल्चरल वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं, हमें हर चीज से जोड़ती हैं और हमें हर चीज को वेलकम करने का एक वे देती हैं. जहां तक मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग हर चीज की पूजा करते हैं, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भगवान तो है ही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रकृति हो, हम सबकी पूजा करते हैं. एंड दैट मेक्स अस समथिंग यू नो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, अदर यू नो यू कैन से अदर एथनिसिटीज, के वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग.
1: राइट. वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द भू माता के हिसाब से, लाइक यू नो फ्रॉम फ्लावर्स टू एनिमल्स टू ट्रीज एंड एवरीथिंग वी सेलिब्रेट. सो ये दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फ्लावर्स.
0: क्या
1: क्योंकि उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, गाँव में लाइक ओल्डन डेज दे यूज टू टेक इट टू द पॉन्ड एंड देन पुट इट इन द पॉन्ड. तो एट द एंड ऑफ द 9th डे दे पुट ऑल द फ्लावर स्टैक्स इन टू द पॉन्ड. तो उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, दे द विलेज दैट इज कंज्यूमिंग दिस वाटर, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इलनेसेस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उसका ये एक सिग्निफिकेंस है दैट वाई दे मेक दिस एंड एट द एंड ऑफ द 9th डे वाई दे इमर्स दैट इन टू द वॉटर इन देयर पॉन्ड्स एंड लेक्स.
0: That's amazing. And the second thing is, if you talk about South India, right? We have temples all around India, but the way those temples were built, it's still a mystery. It is still I'm talking about the architecture. It is so unique. It's so different. दोस्तों, अगर आप कभी जाएं केरला, आप जाएं कभी तमिलनाडु, आप अचंभे रह जाएंगे कि जिस तरह से वो टेम्पल्स बनाए गए हैं, उसके अंदर की जो मूर्तियां उनको कार्विंग करी गई है और उनका जो सिग्निफिकेंस है, जब आप उनके लोकल प्रीस्ट से बात करते हैं तो एक अजीब सी

0: यू नो दिमाग का दरवाजा जो है वो सुन हो जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है. उस टाइम पे हमारी जो साइंस थी इतनी एडवांस थी कि हम लोग इतना सोचते थे. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ यू नो थिंग्स वी हैव इन आवर कंट्री एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. देन वी कम टू वेदा. वेदा जी वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सो व्हाट विल हैपन दिस ईयर इन बथुकम्मा प्रोग्राम. व्हाट आई हैव इज द डेट इज 17th ऑफ अक्टूबर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 PM टू 9 PM. So as we were speaking, it is for 9 days. So that will be the 9th day, or it will be the start of those 9 days.
1: No, that's going to be the 9th day.
0: 9th day, okay.
1: It's end of the 9th day.
0: Ji. Yeah. So on that day, what is the program?
2: So nahi, wo jo bol rahe hain, like this, we are celebrating on the 7th day, I think. So.
1: Yes,
2: so
1: 17th
2: is 7th day.
0: Okay, okay.
2: So 7th day. हाँ, so 19th is the 9th day basically. जब होता है तो 20 तारीख को दसरा है ना, तो दसरा के एक दिन पहले इट विल कम
0: एंड. ओके ओके ओके ओके. तो आप 17th day को वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं.
2: जी, 7th day में सेलिब्रेट कर रहे हैं. उसको क्या उसको वेन्नमुद्दल बतकम्मा बोलते हैं. तो एवरी डे हैज अ नेम
0: एंड सिग्निफिकेंस.
2: सिग्निफिकेंस तो ये स्टार्टिंग विद स्टार्टिंग डे 1 11th अक्टूबर से इट इज बेसिकली एंगिली मेतकुल बतकम्मा. सॉरी, एंगिली पुल बतकम्मा एंड देन इट विल गो ऑन एंड देन 7th डे को वो वेन्न मुद्दल. वेन्न मीन्स बटर.
0: बटर
2: जी, वेन्न मुद्दल बतकम्मा बोलते हैं उस दिन.
0: ओके, सो व्हाट विल बी दी लाइक द प्रोग्राम, क्या क्या होगा, लाइक व्हाट विल हैपन ऑन दैट डे from 3 o'clock till 9 p.m. Can you tell us a little bit about it?
1: So we have like kids activities and adult activities, and after that we are going to play around, just like as we said, like garba.
0: Okay. Okay.
2: And also we have like the best Batkama competition.
1: Best Batkama competition.
0: So means something which we make, or the lady who going to be dressed up, she will be honored.
2: No. Jo अच्छे अच्छे बतकम्मा बनाएंगे पूरा.
0: अच्छा.
2: क्योंकि ये तो यू कैन मेक हाउ मच एवर यू वांट.
0: ओके,
2: किसी भी साइज का. लास्ट टाइम शी एक्चुअली ब्रॉट अ बिग बतकम्मा. शी मेड पूरा फ्लोरल स्टैक जो है, शी मेड अ बिग वन. तो हुएवर कैन मेक इट विथ फ्रेश फ्लावर्स एंड देन द हाइट जो क्राइटेरिया होता है, जजिंग क्राइटेरिया, दैट इज वॉट शी इज गोइंग टू गिव एंड शी इज गोइंग टू लीड दैट. तो हमारे जजेस हैं, तो वो देख के दे विल से कि अच्छा, ओके, हु विंस द फर्स्ट प्राइज. तो
0: कुछ ब्राइब ब्राइब चलेगा.
1: क्राइटेरिया लाइक द बतकम्मा क्राइटेरिया टू आवर जजेस एंड दे आर द वंस हु इज गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट बतकम्मा.
0: ओके, सो यू आर हियर सिंस व्हेन in Calgary?
1: 13 years.
0: So we talk about a little bit back home. So you celebrated this back home also?
1: Of course, like I just used to love like being part of Batkama, and before Batkama, like at least a week or 10 days prior to Batkama, so we used to collect like the flowers, various different types of flowers and everything from everywhere, like farms and all. And I from our house itself, we used to have like high, like almost 6 feet.
0: Oh, wow. Mere se bhi lamba.
1: Yeah.
0: That's
1: so
0: amazing.
1: So, like, my dad used to do everything by himself, and from a week prayer to the.
2: People are passionate.
0: Mm-hmm. No, of course.
2: The more, the bigger, and then they love to celebrate.
1: Exactly.
0: Namita ji, every part of India you go, people are.
2: Absolutely.
0: Same kind of the thinking is same. When it comes to religion, we are definitely, you know, we celebrate every religious festival with the hearts, right?
2: Yes.
0: So it doesn't matter which part of India you are, or especially aajkal to jo again it's a way to connect. Like I feel people have come more closer to South India because of the movies. I feel that way, right?
2: Sure.
0: I feel that way because the thing is, the way maybe a person from Punjab will not know like what exactly happens in Tamil Nadu, right? Maybe they will go, maybe they'll not go. But once they see a South Indian movie, which is a super hit, okay, let's say you know, and they will see, oh, yaar, ye hota hai wahan par, aise temples hai, aur aise festival manate hai, right? So people have connected more through Pan India, through the movies. There has to be a way to connect it. Our country is so big, so some God has created a medium from where people can connect with each other. Same way the Punjabi movies are dubbed.

0: small or big, doesn't matter. So
1: correct. So don't worry about the competition.
0: Exactly.
1: Everybody, yeah. Guys, we are here for a Batakama festival. Everyone, चाहे जो जो भी आपके हाथ में दो दो flowers है या दस flowers है, जो भी है, just bring a small decoration of the flowers, make it into a concentric circle, small, right? So aap jab bhi like just do something, kyunki ye this festival is to honor goddess Gauri and you know make those flower stacks and everything. So if you are coming, please do some, bring some small batkamma with you and we will celebrate aapke ghar ke lakshmi ko, please hamare sath celebrate kijiye.
2: क्या बात. सो दोस्तों ये बहुत अमेजिंग फेस्टिवल होने जा रहा है, तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं जरूर इनसे कांटेक्ट करें, calgarytelangana@gmail.com. आप सुन रहे हैं रेडियो सो संगम 94.7 FM पर. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.
3: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 वी दे.
4: लाइसेंस नंबर 10394.
5: हाई क्वालिटी वाली फोटो चाहिए ने, तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दिया दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच, तो हाड़े कारोबार जा सोशल मीडिया प्रोफाइल ले प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा ले यादगार बन जावे. साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन ता जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.
6: ग्रोसरी खरीदण लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
7: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा. कीमतां कट ते क्वालिटी A1.
6: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
7: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां. हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
6: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर. पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव.
7: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू.
6: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड.
7: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर.
6: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे.
7: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी.
6: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशन दा सांझा फोन नंबर
7: 403-835-2222.
8: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटा दा लगदा है. होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
5: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो. ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया. ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो. तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन. बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208.
9: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ. ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ. ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ. ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

0: ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ।
1: फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं रेडियो संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। हमारे स्पॉन्सर्स के कुछ मैसेज। अगर आप इंश्योरेंस चाहते हैं और चाहे वो सुपरविता इंश्योरेंस हो, मॉर्गेज इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट करें पंजाब इंश्योरेंस के से हरपिंदर सिद्धू जी और लवप्रीत सिद्धू जी को। फोन नंबर 403-404-3500। मदर इंडिया रेस्टोरेंट नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन के लिए सिटीज के ब्लेंडिंग में खुल गया है। 24 घंटे खुला रहता है। 40 तक जो गेस्ट हैं वो बैठ के खाना खा सकते हैं और देसी घी में यहाँ पर खाना बनाया जाता है। फोन नंबर 403-936-7777। पिक्सल फूडो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के कैलगरी में है। पिक्सल फोटो स्टूडियो जहां सिर्फ $7 में आप पासपोर्ट फोटो तैयार करवा सकते हैं। आपको फोटोग्राफ चाहिए ओसीआई के लिए, यूएस वीजा के लिए या और किसी गवर्नमेंट आईडी के लिए, तो $7 में आप ये फोटोग्राफ बनवा सकते हैं। फोन नंबर 403-947-0060। सोनिक इंश्योरेंस अल्बर्टा में ट्रकों के लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस। अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कीजिए मानस बहुजा जी को सोनिक इंश्योरेंस पे 587-832-1208। वाईवाईसी होम केयर, अगर आपके घर में बुजुर्गों के लिए कुछ हेल्प की जरूरत है तो आप जरूर वीरपाल जी को फोन करें 825-760-0983। ओएसिस स्माइल मेडिकल नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में मॉर्निंग सनराइज एरिया में ये जो मेडिकल खुला है, आप यहां पर अगर कोई डॉक्टरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो कॉल करें 587-617-4696। मर्सिडीज बेंस कनाडा की सबसे बड़ी डीलरशिप मर्सिडीज बेंस की कैलगरी के जो कंट्री हिल्स है वहां पर है। तो अगर आपको

0: अपनी गाड़ी खरीदनी है मर्सिडीज तो आप फोन कर सकते हैं 4039036757 पर. हमारे साथ आज कुछ गेस्ट जुटे वाले थे फोन पे लेकिन मुझे लगता है कि बिजी हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके लिए हम लोग बात करेंगे शकील साहब से जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे फोन के ऊपर, और हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे. शकील अहमद साहब अभी काफी बड़े लाइक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कैलगरी के अंदर, ये उनसे बातचीत करते हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते हैं. शकील भाई बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में. जी जी शकील भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको एक बहुत ही अमेजिंग सम्मान से नवाजा गया है और कैलगरी इम्पैक्ट जो अवार्ड आपको दिया गया है इसके बारे में थोड़ा बताएं सर हमें भी, ताकि थोड़ी सी प्रेरणा मिले.
1: के मिनिस्टर हैं मल्टीकल्चरलिज्म के मोहम्मद यासीन, उनकी मिनिस्ट्री ने जो ना शुरू किया था उन्हीं की कोशिश से ये शुरू हुआ
0: जी.
1: तो गुज़िश्ता 5 सालों से ये जो है अवार्ड मुख्तलिफ शोबा जात में
0: जी
1: नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं अल्बर्टा गवर्नमेंट की जानिब से उनको जो ना एजाज जो ना अवार्ड से नवाजा गया था. उनके समाजी एंटरप्रेन्योर स्पोर्ट्स और जो ना वुमेन्स के लिए यूथ के लिए जो जो अपने फील्ड में काम कर रहे होते हैं
0: जी
1: उनको जो है अवार्ड से नवाजा जाता है. तो ये साल में एक अवार्ड फंक्शन होता है जो अल्बर्टा का सबसे बड़ा एक तरह से समझ लें कि इमिग्रेंट्स एक्सीलेंस अवार्ड कहलाता है. तो इसमें तमाम तकरीबन 6 या 8 कैटेगरीज होती हैं
0: जी जी जी.
1: उसमें से बहुत सारी एप्लीकेशन आती है तो उनमें से एक कमेटी जो अल्बर्टा गवर्नमेंट की वो इसको सिलेक्ट करती है
0: जी.
1: इसके रेसिपियंट को फिर जो अक्टूबर के शुरू में या सेप्टेम्बर के एंड में जो ना ये प्रोग्राम जो है या तकरीब मुनाकिद की जाती है. गुज़िश्ता जुमे को भी जो है पिछले जुमे को यानी लास्ट फ्राइडे को ये तकरीब जुबली ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई और जिसमें तकरीबन 20 के करीब जो है ना मुख्तलिफ शोबाजात की नुमाया अफराद को जो अवार्ड से नवाजा गया. और इसका नाम अल्बर्टा, पहले इसका नाम था अल्बर्टा इमिग्रेंट न्यू इमिग्रेंट अवार्ड, बाद में पिछले साल इसको तब्दील करके अल्बर्टा इमिग्रेंट इम्पैक्ट अवार्ड के नाम से जो है नाम तब्दील किया गया इसका
0: जी.
1: तो इस साल जो रेसिपियंट थे उनमें खुशकिस्मती से मेरा नाम भी शामिल था और मैंने अपने कंट्री में भी कहा कि ये अवार्ड जो है ना ये कोई जाती तौर पर मेरा नहीं है, ये सारी कम्युनिटी का है. कम्युनिटी एट लार्ज जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी दोनों काउंट होती है, आपकी अपनी कम्युनिटी भी और आपकी जो है कम्युनिटी एट लार्ज मेन स्ट्रीम कैनेडियन हमारी कम्युनिटी है
0: जी. बिल्कुल आपकी बहुत मेहनत है शकील भाई जो आपको ये अवार्ड से नवाजा गया, और आपको बहुत बहुत मुबारक.
1: थैंक यू. तब सुनने वालों को भी देखने वालों को भी जो है ना हमारी तरफ से जो है ना बड़ी उनकी सबकी दुआएं, उनकी मेहनत, दोस्तों की, साथियों की, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जिनके साथ मैंने काम किया 25 साल मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर
0: जी. बहुत बढ़िया सर. तो थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. तो आज हम बात करेंगे रेफरेंडम के ऊपर. शकील भाई अभी भी लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा है कि ये रेफरेंडम क्या है और क्या मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे, जो सवालात हैं उसके अंदर थोड़े से घुमाव फिरा के दिए गए हैं, तो उसको अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें थोड़ा जल्दी जल्दी ताकि वो लोगों को थोड़ा आसान हो जाए. सबसे पहले तो ये बताएं इसके अंदर आपके हिसाब से आप एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि हर इंसान को जो भी हमारे अल्बर्टा में है उसको इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए कि नहीं?
1: बिल्कुल. देखिए अल्बर्टा की हिस्ट्री का पहला जो ना रेफरेंडम हो रहा है, पता नजर इसके इसका क्या रिजल्ट आता है. ये कोई बाइंडिंग नहीं है, यानी जो लोग अपनी इसमें राय देंगे वो गवर्नमेंट इस पे अमल करने या ना करने के पाबंद नहीं है, पहले तो ये चीज क्लियर
0: जी.
1: लेकिन इसी लिस्ट के साथ साथ हमें अपना ये वोटिंग राइट इस्तेमाल करना है
0: जी.
1: और जो है जो सवाल जो हमें समझ आते हैं कि जी हमारे इमिग्रेंट्स या ये कनाडा या

0: 129जो है वो कहते हैं कि 9, ठीक है, मतलब यूसीपी की पॉलिसी है 8 से 9 तक जो सवालत है उस पर आपने यस करना है
1: जी,
0: ठीक है, यानी गवर्नमेंट को इख्तियार देना है कि जी वो ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन को और उसको कर सके
1: जी,
0: ठीक है
1: जी।
0: इसके साथ साथ जो एनडीपी है अपोजिशन पार्टी वो कहती है कि नहीं जो है हमने 9 to 9 यानी सारे सवालों को आपने वो करना है। अच्छा, अब आपका सवाल आता है कि आया
1: जी,
0: मेरी आवाज आ रही है?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर।
0: अच्छा, अब ये जो सवाल आता है कि जी इसकी जरूरत थी या नहीं थी
1: जी,
0: देखिए बात सीधी सीधी ये है कि हर टाइप के लोग हैं हमारे सूबे के अंदर
1: जी,
0: ठीक है, जब इलेक्शन जब गवर्नमेंट के ऊपर ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी जी अलहदगी चाहने वाले भी मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या रेफरेंडम एक्ट बनाया और इलेक्शन अल्बर्टा को जो ना इसकी जिम्मेदारी दी, तो इलेक्शन अल्बर्टा ने जो कवानीन है कि आप जो ना 178,000 सिग्नेचर करवा के लेके आए
1: जी,
0: तब हम इसको ट्रिगर करेंगे
1: जी,
0: ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी
1: जी।
0: तो जब वो जो सेपरेशन वाले जो लोग थे जो अलहदा होना चाहते हैं
1: जी,
0: उन्होंने अपनी कंप्लेन शुरू की, तो फिर उनकी जो है ना उनके मुकाबले में एक और ग्रुप भी आया जिसे उर्फे हम फॉर एवर कैनेडा के नाम से जाना जाता है
1: जी,
0: उन्होंने भी सिग्नेचर साइन किए, तो तकरीबन 7 लाख से ऊपर लोगों ने, दोनों ग्रुपों ने साइन किए यस और नो वालों ने, यानी फॉर एवर कैनेडा और ये
1: जी।
0: अब प्रीमियर से भी कई दफा ये सवाल पूछा गया कि इसकी क्या जरूरत थी
1: जी,
0: तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई हर शख्स को यहाँ पे रहने की बात करने की इजाजत है
1: जी।
0: अब उसका रिजल्ट आए या नो में आए या यस में आए, लेकिन लोगों की राय को आप रोक नहीं सकते। जब एक बहुत बड़े जो लोग हैं तादाद में कोई 3 लाख के करीब, वो चाहते हैं कि जी हमारा ये हम ये हमारा लीगल और जो डेमोक्रेटिक राइट हम उसको एक्सरसाइज करें
1: जी,
0: तो गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती
1: जी,
0: ठीक है। अब ये नॉन बाइंडिंग जो रेफरेंडम करवाया जा रहा है
1: जी,
0: वो इसलिए करवाया जा रहा है पहले मरहले में कि जनाब लोग उनकी राय है, उन तमाम लोगों की जो कनाडा के साथ रहना चाहते हैं और जो एक अल्बर्टा को अलग देखना चाहते हैं, दोनों की राय आ जाए
1: जी।
0: तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है
1: जी।
0: अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट ये चाहती कहे कि जी एक बहुत बड़ी तादाद है अलहदा होने वालों की, लेकिन हम रेफरेंडम नहीं करवाएंगे
1: जी,
0: तो ये भी एक तरह से जो ना वो वायलेशन है उन लोगों की के जो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, आप उनकी राय से मुत्तफिक हों या ना हों, लेकिन ये हर शख्स को अपनी बात करने की आजादी है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी हुकूम जो है वो उसको वो नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शख्स का
1: जी,
0: कि वो अपनी बात कहे, अपने मजहब की आजादी, अपने फिका की आजादी, जो भी कुछ है जो हमें चार्टर ऑफ राइट्स में दिए गए हैं
1: जी।
0: तो अब इसकी क्या, इसके क्या नतीजे, इसका आउटकम क्या होती है वो देखना
1: जी।
0: और यकीनी तौर पे जो है 19 तारीख 20 तारीख को इसका जो रिजल्ट इब्तदाई रिजल्ट आएगा तो वो जो है थोड़ी बहुत शक्ल उसकी वाजे हो जाएगी
1: जी,
0: लेकिन जो असल रिजल्ट है वो आने में 2-3-4 दिन लग जाएंगे परसेंटेज वाइज के हिसाब से, लेकिन एक रफ पिक्चर हमारे सामने निकल के आ जाएगी।
1: शकील भाई, एक और सवाल जो कि बहुत इस समय लोगों के मन में है और लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक इतनी बार और प्रीमियर भी आए इस गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन किसी की वजह तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया, व्हाई अभी?
0: अच्छा देखिए, इसके अंदर भी एक इसका सियासी जवाब ये है कि अल्बर्टा के जो शहरी हैं
1: जी,
0: ठीक है
1: जी,
0: वहां वो शहरों में रहते हों या वो देहातों में रहते हों या दूर दराज इलाकों में रहते हों, तब जो है ना मौजूदा जो गवर्नमेंट है लिबरल गवर्नमेंट
1: जी,
0: उससे उनकी एक पुरानी जो है ना लाचाकी चली आ रही है 1977 से, जब लिबरल के ट्रूडो सबक वजीर आजम थे, ट्रूडो जो थे पियर एलियट ट्रूडो
1: जी,
0: यानी जस्टिन ट्रूडो के जो वालिद थे
1: जी,
0: उनकी एनर्जी पॉलिसियों से नाला होके जो ना अल्बर्टा और खासतौर से ये जो एरिया है हमारा ग्रैंड प्रेरी, सॉरी ये जो प्रेरी रीजन कहलाता है
1: जी,
0: इसमें बड़ी जो है ना उनसे उनके साथ उनकी कोई आमांगी नहीं
1: जी।
0: अच्छा, अब आपने कहा कि इतने सारे प्रीमियर आए, किसी ने हिम्मत नहीं की
1: जी,
0: देखें जितनी शिद्दत से इस प्रीमियर या इस गवर्नमेंट के दौर में ये बात उठी है
1: जी,
0: इससे पहले कभी नहीं हुई थी
1: जी।
0: और ये भी बड़ी मजे जो है ना इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमेशा अलहदगी की तरीके जो है या ग्रुप जो है ये आमतौर पर उसी वक्त एक्टिवेट होते हैं जब फेडरल में जो है ना गवर्नमेंट होती है लिबरल की। आप देखिए कि केबेक में 2 दफा रेफरेंडम हुआ
1: जी,
0: उसको भी फेडरल गवर्नमेंट

0: थी वो लिबरल गवर्नमेंट थी
1: जी।
0: अभी भी जो रेफरेंडम जो ट्रिगर हुआ है इस वक्त भी है, तो वो लोग ऑटवा से अल्बर्टा में रहने वाले जो है, अब माना कि वो अक्सरियत, इसका रिजल्ट तो जब आएगा पता चलेगा
1: जी,
0: लेकिन लोगों के अंदर जो अल्बर्टन्स है उनके अंदर एक बार नाखुशी का इजहार तो है फेडरल गवर्नमेंट से
1: जी,
0: कि हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो है, आपने सुना होगा, बड़ा बयान दिया था कि मैं फेज आउट कर दूंगा ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है यहाँ की
1: जी।
0: तो जबकि अल्बर्टा में जो ब्रेड एंड बटर जो लोगों का, वह ऑयल एंड गैस से रिलेटेड 60-70% लोग इसी से रिलेटेड है
1: जी,
0: या एलाइड इंडस्ट्री से
1: जी।
0: तो ये सारी बातें हैं। अब इस गवर्नमेंट के ऊपर ये बारह ये जानबदारी का या पार्शियलिटी का इल्जाम जरूर लगता है कि जी इसने जो ना इसको जानबूझ कर ट्रिगर किया, हालांकि ऐसा नहीं है
1: जी।
0: हर शख्स को अपने सूबे में अपने अपनी बात करने की आजादी है
1: जी।
0: और वो हमें 20 तारीख को पता चल जाएगा कि भाई वो लोग जो कनाडा से अलग होना चाहते हैं उनकी तादाद कितनी है
1: जी,
0: और जो कनाडा के साथ रहना चाहते हैं उनकी तादाद कितनी है। बजाय यही महसूस हो रहा है कि ये रेफरेंडम में जो जो सवाल नंबर 10 है
1: जी,
0: उसमें अक्सरियत ये जवाब आएगा कि लोग जो है वो कनाडा के साथ रहना चाहते हैं। बाकी 1-9 तक जो है उसके अंदर जो है मिली जुली जो है कैफियत होगी, और वो जो है ना उसको ऑब्जर्व करेंगे, किया जाएगा कि डाउन द रोड आगे चल के ये इसके क्या असरात होंगे। जैसे उसमें इमिग्रेशन कंट्रोल का एक सवाल है, सिटीजनशिप का, कि जो हमारे नए ड्राइविंग लाइसेंस बने उसपे सिटीजनशिप का मार्क किया हुआ है, तो उसपे भी लोगों में बेचैनी है कि ये डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। और गवर्नमेंट कहती है कि इससे हम जो ना इलेक्शन के अंदर जो है उसको जो
1: धांधलीबाजी जो होती है उसको रोक सकते हैं,
0: हाँ उससे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर मिली जुली राय है
1: जी,
0: और जरूरी नहीं कि आप हर एक की राय से मुत्तफिक हो
1: जी,
0: हर एक का अपना अपना नुकता नजर है, वर्जन है। लेकिन एक बार एक हेजिटेशन, सॉरी हिजान जिसको हम कहते हैं ना, सेंसेशन अल्बर्टा के शहरों रहने वालों के जरूर है कि ये रेफरेंडम अननेसेसरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि ये भी जरूरी है, वो लोग जो ये कहते हैं कि रेफरेंडम जरूरी है उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है, और उन्होंने अपनी जो इलेक्शन अल्बर्टा को जो सिग्नेचर करके दिए हैं उसमें उन्होंने अपनी ताकत को शो किया। तो अब नतीजे हम देखते हैं, रिजल्ट 20 तारीख को।
2: नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, अगेन डेमोक्रेसी है शकील भाई, और अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें कई लोग हैं जो उनका एक पक्ष, जो एक पक्ष है वो एक तरीके की चीजें मानता है और कई लोग हैं जो दूसरी तरीके की चीजें मानते हैं, तो दोनों को खुश करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी को जमहूरियत कहते हैं, राइट।
0: बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं हम, क्योंकि जो यहाँ पे इमिग्रेंट बन के आए हुए, तो हमारे लिए थोड़ा सा इतना आसान नहीं है इसको कबूल करना, क्योंकि हम जिस माहौल में आए हैं वो चीज जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ इस मुल्क में, कनाडा में आने के बाद हम देखते हैं कि भाई जो भी अपनी राय का इजहार करना चाहता है, और हमें यकीन होता है कि जो है जो हम जिसको वोट डालेंगे या तो वो जीतेगा या वो हारेगा
1: जी,
0: ठीक है, और हमारा वोट काउंट होगा
1: जी।
0: और वो ऐसा होता है, हमने माजी में बहुत करीब हमने देखा है कि कई MLA 5 वोटों से जीते, कोई 27 वोटों से जीते
1: जी,
0: हारे, ठीक है ना। तो बहुत एक एक वोट की अहमियत होती है जो हमारे शायद हमारे मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में नहीं होती, या साउथ एशियन कंट्रीज में उसकी शायद वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक ही वोट की वैल्यू होती है। और हमने फेडरल इलेक्शन में 2025 की देखा कि क्वेबेक में जो है जो लिबरल की कैंडिडेट थी वो एक वोट से जीत गई थी, फिर ब्लैक क्विपेकुआ का एक
1: जी
0: ज्यूडिशियल रिकाउंटिंग के अंदर फिर वो वोट बराबर हो गया, टाई हो गया, फिर उसके बाद उनको नया इलेक्शन करवाना पड़ा, फिर वो दोबारा वही लिबरल की कैंडिडेट जीत के आ गए
1: जी जी जी।
0: लेकिन ये जो बात है कि एक ही वोट की एवरी सिंगल वोट
1: काउंट,
0: सो वो यहाँ अमलन हमने देखी है जी, शायद हमने अपने अपने मुल्कों में कभी नहीं देखी हो, इसलिए थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है
2: जी। बिल्कुल शकील भाई, सो शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इजीली लोगों को समझाया, और आई होप के लोग इससे जरूर फायदा उठाएंगे और इस रेफरेंडम में जरूर हिस्सा लेंगे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपके पुरस्कार के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
0: बस सर, अब मैसेज तो ये कि ये अक्टूबर का महीना एक और है हमारे पास सर्दियों से आने से पहले पहले
1: जी,
0: किसी भी वक्त सर्दी आ सकती है, लेकिन ये कि जो बचा कुछ टाइम है उसको एंजॉय करें, और जो है सबसे बढ़ के सेफ्टी ऑन रोड, ठीक है, आप जहाँ कहीं भी जाएं

0: अपना योगदान अपना हिस्सा डालना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया बात शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोबारा से।
0: थैंक यू।
1: तो ये थे हमारे शकील अहमद साहब जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया किस तरह से रेफरेंडम है और कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो उनसे दोबारा बातचीत होगी। एक लास्ट मैसेज आप सबके लिए दोस्तों, अभी एक सोशल मीडिया पे एक लेडी का जो वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है, उसके अंदर वो जो लेडी हैं वो एक सज्जन को पीछे से पकड़ रही हैं। अब ये पता नहीं उनकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन उनके बीच में काफी बहस हो रही है और अल्टीमेटली पुलिस बुलाई गई और उस लेडी को हैंडकफ किया गया और ये भी सोशल मीडिया पे आया। एक बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि यार ये हमें पहले बायलॉस का लॉस का पता होना चाहिए, उसके बाद हम अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाएं या आगे इस ऐसे वाकयाओं को और एस्केलेट करें। एंटाइटलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। हम लोग पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं कि भाई सब लोग एंटाइटल्ड हैं, हम अकेले नहीं है। अगर हम एंटाइटलमेंट के बाहर जाते हैं तो फिर सब लोग एंटाइटलमेंट में आ जाते हैं। हमें सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, इखलाक से बात करनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। हम लोग अपने आप को, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग इमिग्रेंट्स हैं तो हमारे पास लेस राइट्स हैं, हम सब लोग यहां पर आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम अपने मुल्कों से सीख कर आते हैं उनको हमें यहां भूलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के जो लॉज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ, थोड़ा सा हलीमी से लोगों की इज्जत करके बातचीत करें। और अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर एक बंदा गलती करता है तो उसका जो बैकफायर है या रिजल्ट है वो पूरी कम्युनिटी पे आता है। आजकल जो बहुत बड़ा एक और प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है डंपिंग की, तो डंपिंग के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज बहुत टाइम कम है तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। अगले हफ्ते हम लोग दोबारा मिलेंगे और कुछ नए सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आप सबके साथ। तो अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और बाहर जाकर वेदर को एंजॉय करें जितने दिन अभी हमारी गर्मियों के बचे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।
2: आज फेर नहीं लोड मिलिया
3: की होया,
2: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो रह गए ना फेर पीछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: द टाइम इज 6 PM। You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.